0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
3: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र. एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं. अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की. एडमिशन

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।
4: डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
3: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
5: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

0: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
1: डियर साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन।

एमबीबीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: अरे यार भैया ये दुल्हन कितनी की आती होगी?
2: अरे बेटा दुल्हन बहुत महंगी पड़े रे, वो दुल्हन जाके पूछ के आई हो तू। 50,000 को डीजे, 30,000 को ढोल बाजा, 5,00,000 की जेवर, खाना पीना में 4,00,000 और घुसीड़ दे। और जेवन वो आजकल वो लाइटिंग नहीं आते, चूर चूरी चूर चूरी चूर चूरी वालों नहीं आवा आजकल के चोचले फटाका 5,000 के। अब तू बता इतनी महंगी दुल्हन तू लिए रे? नहीं लान को बेटा, गरीबी आ जाए घर में थोड़ा आराम से देख के बेटा, दुल्हन वाले चौक मत पालो, दुल्हन वाले चौक मत पालो। बड़ी गहरा जिंदगी रे, वाह इसलिए तो नहीं कर रहे अपन, भी हो गई अपन हो ही नहीं पा रहे।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वर 89.6 पे रेडियो डीएस
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों, गंगापुर सिटी का फिलहाल तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के साथ और समय हो चुका है सुबह के 10। दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम और थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होऊंगा आपका फरमाइशी कार्यक्रम।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती। रेडियो डीएस।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: रफीक खान बोल रहा हूँ, लोगों मस्जिद के पीछे से।
1: रफीक जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
0: आज भी चेहरा उसकी मेरी आंखों में रहता है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश।

0: 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती।

0: बताएं सर।
1: आज सर चौधरी निवेदन कर रहा हूँ आवी जी से।
0: चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: गाना बढ़िया लाए सर रेडियो डीएस के लिए।
0: बताएं सर।
1: मैं वही दर्पण वही।
0: बिल्कुल सुना रहे सर आपकी फरमाइश का गाना।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती।
3: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
3: हेलो
4: जी, नाम बताएं सर।
3: आसाराम जागा सर।
4: आसाराम जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी अम्बेडगढ़ धर्मशाला के पास से।
4: बताएं आसाराम जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: काली कमली वाला मेरा यार है।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ये भजन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS
0: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।
3: जी नाम बताएं सर।
4: सर नमस्कार।
3: नमस्ते, नाम बताएं आपका।
4: फरमान खान।
3: फरमान जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: सिंगापुर से।
3: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
4: सर मुझे वो गाना वो सुना दो, परदेश जाके परदेसी।
3: हाँ जी,
4: परदेश जाके परदेसी।
3: बिल्कुल सुना रहे सर आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हर बीच में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो
3: हेलो FM।
2: हाँ जी नाम क्या है? गुड मॉर्निंग,
3: मेरा नाम पायल अग्रवाल है।
2: कहाँ से बात कर रहे सर?
3: मैं दयाल नगर मिर्जापुर से बात कर रही हूँ।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: मेरा गाना लगाइए सौ दर्द है, सलमान खान की मूवी का है।
2: सो दर्द है,
3: सौ दर्द है मैम, प्लीज गाना चलाइए। मैं रोज कॉल करती हूँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं है, कोई गाना नहीं है मेरा।
2: नहीं मैम, अभी थोड़ी देर में चल जाएगा ना।
3: प्लीज मैम।
2: ओके मैम।
3: ओके

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं आपका?
1: कोमल।
0: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सिंगापुर।
0: बताएं कोमल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस पे?
1: सिंगापुर।

पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: आंसर आपका
1: जी। मेरा नाम सोहेल सैफी है।
0: सोहेल सैफी जी कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? गंगा प्रसाद जी।
0: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: जी? आज गाना सुनना चाहते हैं किताब।
0: किताब सॉन्ग
1: जी सर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: हेलो,
2: हाँ
1: जी, नाम बताएं सर।
2: काना मीना।
1: काना जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
2: आप? मासूम शर्मा का।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप, तो आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: जय हिंद सर।
1: जय हिंद।
0: मिशन क्लीन सिटी कंप्लीट सर।
1: कांग्रेचुलेशंस मिस्टर शर्मा, आपके पीछे सीक्रेट ऑफिसर खड़ी है, उन्होंने मुझे।
2: गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर, नाम बताएं आपका। जम्मू से केशव शर्मा जी।
3: केशव शर्मा जी जम्मू से, कैसे हैं आप?
2: ठीक ठाक हैं सर जी, आप सुनाएं जी।
3: बस हम भी अच्छे हैं सर। बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो?
2: आज मैं सुना दीजिए आपकी कसम का गाना, कर बटे बदलते रहे सारी रात हम। ये गाना बहुत ही पसंद है मुझे जी।
3: बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, सुना तो
2: साथ में दो तीन साथियों के नाम ले लेता हूँ। मैडम है मेरी श्रीमती सुषमा रानी है, मेरे दोस्त हैं जी यूपी से विजय पांडे जी हैं
3: जी,
2: और राजस्थान से पूर्ण वर्मा जी, और हिमाचल से हैं गोल्डी
3: जी। बिल्कुल, सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश।
2: ओके सर जी, थैंक यू।

0: हेलो।
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: नेहा।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: ऑफलाइन।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश कैसा?

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: पायल गुजर।
1: पायल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: दो बटोला,
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं पायल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: ले जा ले जा रे।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं।
0: मेरी रात में
1: बिल्कुल सुना रहे हैं।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: गुलशन।
1: गुलशन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: या नबी नजरे करम फरमाना, ए हसनैन के नाना।

0: तो वक्त हो चुका है 11:01 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन का 99.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फॉर वाइस 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डी।
4: हेलो
5: जी, नाम बताएं आपका?
4: पलक।
5: पलक जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं पलक जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: ख्वाब।
5: सुना रहे हैं पलक जी आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: दीपक सिंह।
0: दीपक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: ना दोस्ती से।
0: बताएं फिर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: सही आ रहा तू तो
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश करिएगा।

0: बताते हैं।
1: शिवम।
0: शिवम कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: रोहतक 3।
0: सुना रहे हैं सर।

0: हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते, नाम बताए सर आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू से रहते।
0: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: फिल्म का नाम है पत्थर के सनम और गाने की बोल है बता दूं क्या लाना ये लौट के आ जाना।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपका, आपकी फरमाइश से।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: अमित बैसला।
1: अमित जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: बावन बात से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: फिलहाल
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: अमित
1: जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: रंगापुर से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते थे?
0: चोरी चाली करो ना आपको।
2: हरी बट्टे बदलांगे तेरी ये माटी का मैं हूँ, देखता रहिए मजा।

0: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़।
1: योगेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
0: अभी? कोई भी बढ़िया सा गीत सुनवा देंगे आज।
1: ओके सर, सुना रहा हूँ मैं आपको आपकी बेस्ट फरमाइश का इसका।

0: नाम शबनम बानो, जंगापुर सिटी से।
1: शबनम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: मेरे दिल को करार आ जाए।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं शबनम जी आपकी।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्ते सर, नमस्ते। नाम बताएं आपका।
0: बाबू खान।
1: बाबू खान जी, बताएं कौन सा खाना पसंद करते हैं।
0: छह लोग नंबर दिल पर सब लोग क्या कहेंगे।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: हेलो
1: जी नमस्ते सर।
0: जी नमस्ते, नाम बताए सर आपका।
1: हंडीराम गुजर बोल रहा हूँ सर,
0: निदरखा गाँव से। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाने के बोल ये है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे।
1: ओके ओके।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो जी, नाम बताएं।
3: खुशी।
2: खुशी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: गंगा खुशी जी।
2: बताएं खुशी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
3: सौदागर।
2: सौदागर?
3: फरारत।
2: फरारत सॉन्ग बिल्कुल सुना रहा हूँ खुशी जी आपको, आपकी फरमाइश पे।

0: हेलो।
1: हेलो
0: जी, नाम बताए। हेलो, हाँ जी, नाम बताए आपका।
1: शिवानी।
0: शिवानी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताए शिवानी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सारा जमाना जल जल के मरे वो।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपका, आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल बोल रहा हूँ।
0: रूपचंद जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं सर जी।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: आज ये सुनना, पुरानी पिक्चर है फागुन, उसका गीत है पिया पिया ना लागे मोरा जिया।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपको, आपकी वॉइस पे बेहतरीन सा सॉन्ग।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: अभी जब स्क्रीट हूँ।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: पंजाब आप से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: बिल्कुल जख्म खाते हैं।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश कैसी?

0: हेलो जी, नाम बताओ।
1: पुष्पंदर मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? बिल्कुल सुना रहे हैं आपका।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: अमन टाटू।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सिद्धू मूसेवाला का 295।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी।

0: कॉपी फिर मैं इसका देगा। हेलो
1: नमस्ते सर।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: संजू सैनी।
0: संजू जी कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? गंगापुर सिटी से।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का गाना।
2: हेलो
0: जी नाम बताएं।
2: कोमल।
0: कोमल जी कहाँ

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर
4: हेलो
5: जी नाम बताएं
4: कोमल
5: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं
4: गंगापुर सिटी
5: बताएं कोमल जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
4: हम सफर के लिए

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? क्या नाम है? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगी? ओके मैम।
2: दोस्तों, वक्त हो चुका है 12:14 का। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: नाम क्या है आपका?
1: जी मैम बाशिद खान, गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: जी तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा।
0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हेलो नाम क्या है आपका?
1: एतन।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: उस्मान कॉलोनी निकलना बजे थी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: पायल की कनेक्ट हो जाएगी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: जी, नाम क्या है आपका?
1: अजय सैनी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: कन्नौज सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ऐसी प्रीत।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: हेलो
4: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: सुरेंद्र मीणा।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: गाड़ी 150।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मैथिक मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: दुनिया तेरी याद आई है।
1: ओके सर, सुना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: राजेश्वरी मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: रसियन बंदाना।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपके।
2: मैं पहचान सुना, मैं सब शुद्ध मैं कहना मिस्टर नहीं, बुकम माया नहीं।

दोस्तों वक्त हो चुका है 12:37 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों मिलते हैं 1 बजे नए तरानों के साथ, सुनते रहिए हमारे आपके मनपसंद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त, और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

करना चाहवानी देवला के नी जाना बनाई रब ने दिली सादगी तो मुड़े बारे बारे जावानी रूप भरिया गल के अंबर तो आई वह दिल के जेड़ी मैं गल बिच पाई वह अच सुना सुना लगता।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों, वक्त हो चुका है 1:59 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, भी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: दोस्तों दोपहर के 3 बज चुके हैं, लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी देर में आपका मनपसंद कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:50 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6। हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका

गुड इवनिंग दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम आपका मनपसंद राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
4: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
5: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
6: हेलो नमस्ते।
7: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
6: नाम चौधरी कर रहा हूँ।
7: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
6: मत रो मेरे दिल।
7: मत रो मेरे
6: दिल।
7: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: परम आदरणीय दीदी, सादर नमस्कार।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: मैं आपका वही जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है रब ने बना दी जोड़ी और गीत के बोल हैं हौले हौले से।
0: हो जाएगा प्यार
1: जी दीदी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।
0: यू वेलकम सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम से बात कर रहा
0: हूँ। मैम मेरा नाम पायल जागा है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मैं लोपुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?

0: பாப்பா?
1: நான் துளசிராம் மீனா, கிராம் பிலு கிடாசி.
0: சார், கொஞ்ச சா கானா சுன்னா சௌகி.
1: फिल्म का नाम है कैद और गाने की बोल है यहाँ कौन है असली कौन है नकली अपने हैं या बेगाने।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: यू वेलकम सर।

0: इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम है ये सलमानी मैम।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: ग्रेट गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज गाना सुनना चाहते हैं, फिल्म का नाम है दबंग, गाने के बोल हैं तेरे मस्त मस्त दो नैन।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: ओके मैम।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: सर बोल रहा हूँ जैसे तो मैदान से।
0: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: चांदी जैसा रंग है तेरा, सोना जैसे बाल।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: नास्ती गुर्जर।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर से। की
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: वो आप क्या राशिया गाना बजा सकते हो?
1: कौन सा सर?
0: चुन्नी में, चुन्नी में।
1: नहीं सर, ये मीणा गीत बंद कर रहे हैं, कोई और बता दो।
0: तो आप तलविंदर का असीने सॉन्ग बजा देना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
4: हाय, आपका
5: मोहम्मद यासीन,
4: कहाँ से बात कर रहे हो?
5: पालकी।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
5: मोहब्बत हो ना जाए।
4: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: ठंडी राम गुजर बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: बदर क्या से बोल रहा हूँ
0: सर। कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाने के बोले हैं साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा पूजा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डी एस करने के लिए। बहुत बहुत
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ सर नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्कार
0: सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तो हमारा बाबू खान है।
0: कहाँ से बात कर रहे सर?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
0: एम रंजीत मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: चंबल के राखू।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, पर ये गाना।

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती के कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।

0: अन्नापुर स्थिति की धरती।
1: क्या बात है, क्या बात है। जिस डेडिकेशन के साथ आपने इस गाने को एंजॉय किया, उसी डेडिकेशन के साथ मैं चाहता हूँ कि आप इन लाइंस को भी एंजॉय करो। चलो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि कह दिया उसने अलविदा, कह दिया उसने अलविदा, जिसने कभी जुदा होने के बारे में सोचा भी नहीं था। वाह वाह वाह, अरे अरे अरे, नहीं मैं आपको डेडिकेट नहीं कर रहा ये लाइंस, ना मैं खुद को कर रहा हूँ। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आज का शो यही तक था, दोबारा मिलेंगे कल। फिलहाल आप ट्यून इन रहो 89.6 रेडियो डीएस पे,
0: गंगापुर सिटी की धरती।

संत कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया।

जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्ज करे।

निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर मैं हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पांव पर खड़ी मृगली हरिसु हेत लगाए, और हरि रोज सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। आज सफरनामा में हम बात करेंगे सन 1991 में प्रदर्शित राज कपूर साहब की महत्वाकांक्षी अंतिम फिल्म हिना के बारे में। फिल्म हिना में ऋषि कपूर साहब और पाकिस्तानी अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार ने इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आपको बता दें कि इस फिल्म में करिश्मा कपूर का भी काम करने का बहुत मन था। वो अपने दादा की फिल्म में बतौर अभिनेत्री काम करना चाहती थी, लेकिन उनके दादा यानी राज कपूर साहब ने फिल्म में चिंटू अंकल यानी ऋषि कपूर साहब को ले लिया था, इसीलिए उनका सपना पूरा नहीं हो सका और वो फिल्म हिना का हिस्सा नहीं बन पाई। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। आज सफरनामे में हम बात कर रहे हैं फिल्म हिना की। 1991 में बनी इस फिल्म को ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा, निर्माण और निर्देशन रणधीर कपूर ने किया। मुख्य कलाकार इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब, जेबा बख्तियार और अश्विनी रहे। इस फिल्म का एक बहुत सुंदर गीत है चिट्ठियां दर्द फिराक वालिया। इसके गीतकार हैं नक्श लालपुरी। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। फिल्म हिना के बारे में बात हो रही है और उसके टाइटल सॉन्ग की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिल्म हिना के टाइटल गीत के लिए जब बातचीत चल रही थी तब राज कपूर साहब ने रविंद्र जैन साहब जिनका इस फिल्म में संगीत था उनको समझाया कि नायिका हिना का इंट्रोडक्शन सीन है जिसमें वो अपने बारे में खुद को बताती है। इस सिचुएशन पर गीत चाहिए। रविंद्र जैन साहब लिख कर लाए। मैं हूँ खुश रंग हिना, जिंदगी में कोई रंग नहीं मेरे बिना। ये सुनकर राज कपूर साहब बहुत खुश हुए और कहा कि बिल्कुल ऐसे ही मुखड़े की उन्हें उम्मीद थी। यही कुछ बातें थी राज कपूर साहब के बारे में। फिर आपसे मिलूंगी। अभी के लिए इतना ही। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: देखो देखो देखो, जो गाना भी आपने सुना है वो बड़ा ही प्यारा गाना था, लेकिन उससे भी प्यारे आप हो क्योंकि आपने ट्यून इन कर रखा है 89.6 डीएस। और एक फैक्ट बताना चाहूंगा मैं कि हमने सुन रखा है घड़ियाल के आंसू, मगरमच्छ के आंसू, और हमने देखा भी है, लेकिन हमने क्या नहीं देखा है, क्रोकोडाइल, घड़ियाल के जीभ। और ये फैक्ट है कि क्रोकोडाइल्स जो है, मगरमच्छ जो है, वो अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकते। मैं खुद से नहीं बना रही, ये वाकई में फैक्ट है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप अपने बुआ जी, अपने मौसी जी, अपने रिश्तेदारों की जितनी भी बुराई कर लो, जितनी भी बार कह लो कि भैया उनकी जो जुबान है वो कैंची की तरह चलती है, भले ही चलती हो, लेकिन एक बात तो प्रूफ हो गया, क्या? कि वो क्रोकोडाइल्स नहीं है। हंसो मत मेरी बात पे। चलो, आपके लिए मैं चार अमेजिंग गाने बैक टू बैक प्ले कर रहा हूँ 89.6 रेडियो डीएस पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: நன்றி நமஸ்காரம்
1: अरे अरे अरे अरे भैया सांस तो ले लो, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस और हम गुनगुनाते हैं। कई बार हम गुनगुनाते कैसे हैं? अच्छा आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ, चलो ध्यान से सुनो। आँख में कैसी, बस बस बस बस बस इतना काफी। अब फैक्ट ये है भैया कि गुनगुनाना तो सही है, लेकिन अगर आप अपनी दोनों उंगलियां लेके अपने नाक को बंद करोगे, चलो करो करो करो, दोनों उंगलियां पकड़ो, नाक को बंद करो, मुंह से सांस लेना बंद करो और उसके बाद गुनगुनाने की कोशिश करो तो गुनगुना नहीं पाओगे। लो मैं करके सुनाता हूँ। बस बस बस भैया सांस तो ले लो, फिलहाल गाने सुनो। प्ले करता हूँ मैं आपके लिए बैक टू बैक चार गाने।
2: गंगापुर स्थिति की धरती।

0: अन्नापुर स्थिति की धरती।
1: यार आप बहुत ही ध्यान से गाने को सुन रहे थे तो मैंने सोचा कि यार ध्यान से मैं अगर दो लाइन पेश कर दूं तो वो भी आप सुनेंगे, तो हाँ सुनो ध्यान से, पेश करता हूँ आपके खिदमत में। अलविदा अलविदा कह ही देते जाते वक्त, अलविदा कह ही देते जाते वक्त, कब तक एतबार करते रहे हम, और नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मत मनाओ गम भैया। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज का शो यही तक था और वापस से कल मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह, कहाँ, रेडियो डीएस 89.6 पे।
0: गंगापुर सिटी की धरती। रेडियो डीएस।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। वक्त तो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट सफरनामे का। हिंदुस्तानी सिनेमा में अनेक अभिनेत्रियों ने अपनी भावपूर्ण अदाकारी से खास पहचान बनाई है, लेकिन ट्रेजेडी क्वीन सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी कहलाई। दर्द की देवी को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं, पर सिने प्रेमियों के जहन में वो आज भी जिंदा है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।